तुमसे कल भी सामना कल तो जानोगे दिल वाला ना दिल है कोई तब तो मानोगे होगा तुमसे कल भी सामना